0: ஹாஃபே வைனையே பாடை சொல்லி வாஸ்கு டிவி போக்கிற இடையோ நீக்கே அவதாரமா சாவுத்தோ
1: கட்டை பரி லைலை வாஸ்கு டிவி போக்னோனி பிட்டி ஆப்னே டிவி பிப்பியோ அனி பனவுன ஜனல் லாகே கொண்டி பனவுனி புக்கா உலாட்ட ஓயினே
0: চিন্তা গর্ণ পর্ষত সদর মুকাম চরিকোট বাট চরি ঘ্যাং জানে বাট মা রয়কো আমরাই চৌধুরী ইলেকট্রনিক্স মা লই যাও তাহা তো তিম্র বিগ্রে কো টিভি মাত্র হই না কি মোবাইল ঘড়ি সবাই পনি আলছনি সকি গনি
1: এ ওরে त्यसो भए म पनि त्यतैतिर लागिहाल्छु नि होइन त
2: अब आउनुहोस् हाम्रै चौधरी